नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: यो हो हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज।
1: मनसुन विशेष अफर सिप सिकौ आत्मनिर्भर बनौ आत्मनिर्भर बनौ।
2: भरपर्दो विश्वासिलो र व्यावसायिक ड्राइभिङ तालिमका लागि सुमन ड्राइभिङ सेन्टर चौतारा समूहमा आउनेहरूको लागि विशेष छुटको व्यवस्था रहेको छ। सिप सिक्ने इच्छा र चाहना तपाईँको, दक्ष चालक उत्पादनको दायित्व हाम्रो।
1: ट्रायल सेन्टरको मापदण्ड अनुरूप दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षकहरूद्वारा कार मोटरसाइकल चलाउन सिकाइने सिन्धुपाल्चोकको एकमात्र ड्राइभिङ सेन्टर। प्रोप्राइटर सुमन भुजेल, ठ्याक्कै डिभिजन सिंचाई कार्यालय चौतारा सँगै। सम्पर्क नम्बर 98 42 40 20 54।
3: Elambu FM 89.6 MHz।
4: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो। परमेश्वर से सेमनिबा काते दमसु मुला जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा विश्वासी चमक बसुगो अंक 87 रंगित स्वागत मुला नियोग तामाङ रङ्ब जोशी रङदेन छुटकारला गेन गवाही जुमुला रङ्दा हरङ्ब नोङमुला तिगा रङ ठेनिगा देला लाग्री जखेन उत्साहित मुसुला वा चुसे रङ्दा रङ्ला लाग्री एन उत्साहित सोमुला रङ्गिदाङला प्रश्न मुला थेनन परमेश्वर जोशी ताम गदे ठेनिगा देला लाग्री लसुजी रु ठक्कन थेनन परमेश्वर मुसुला जोसे रङ्दा माया लसुमुला जति परमेश्वर से थेनी गरी माया लसुमुला थेन दे रोसे रङ्ला लाग्री एन ओत्ते नन लसुला जति परमेश्वर से थेनी गरेर लाग्री लसुजी यसैया 54 अध्यायला 10 गाङ कदे योङ योङ ताजी थेन दे गाङ कदे हटप ताजी तासै एन एला लाग्री नाला अटुट माया हटप लसेला आरे नमी नाला शान्तिला करार भङ्गा ताला एदा कृपा लसुला पराम प्रभु सुङला सबै रङसी रङला लुइरे रङसी आशा लामा परिणाम अमरङ मुसुला चुला मतलब छु आइन बकि परमेश्वर से रङदा ठ्रास्यु मुबा वा परमेश्वर से रङदा मैसुबा मुला वा रङ रोला लाग्री महत्वपूर्ण आरे मिसे स्यन्दु मिग देदा चुरङ व्यवहार लजिबा हमला तसै परमेश्वर से रङला जत्तु गदेदा हाइमा चुरुङबा व्यवहार अलास्यो मुला यसैया 41 अध्यायला 10 चु कारण थक्लास्युगो तिग्द विषम नएनन् मुला निरोसहित थलास्युगो तिग्द विषम नएला परमेश्वर हिनमा नएदा बाङ बासोला नएदा सहायता लाला नला धार्मिक तला दाहिने यासे नएदा समाप लाला दत्ते परिस्थिति रङला पछाडि अमरङबारी हमला रङ कठिन दुई ग्याम गुजब तबारी हमला रङला परिस्थिति रङमन तसै हाइमदमन कृतज्ञ तस्युगो हाइमदमन स्वीकार लसुगो कि परमेश्वर से रङदा माया लसुमुला रो रङला आवा मुसुला थेन्दे परमेश्वर से रङला हेर्चा लाभ प्रतिज्ञा लसुमुला थेन्दे रङसे बिताइदिव दिन गदे दानुन ताम आरे जुन रोसे रङला लुइरी रङला दुई तालिला अनुसार सम्बोधन लस्योसेला आरे थेन्दे समाधान लस्युसेला आरे फिलिपी 4 अध्यायला 11 इन्ज 13 नद खाच तसी बिसी पङ्बा आइन तिग्द विषम जत्तोन दुईरी सन्तोक लसी चितो मुला बिसी नद था मुला ओछे खाच तगै अतगै खरङ लसी ब्रो ब्रतोला बिसी नद था मुला थेरङ लसिन चमेङ्गै अचमेङ्गै लान मुसै अमुसै जत्तोन दुईरी सन्तोक लसी चितो मुला बिसी नद था मुला ख्रिस्टे पिनबा शक्ति गर्दिनुहुन् नाइचु जम्मन ताम लाबरी खामला दत्ते परिस्थिति याङला पछरी मुबकी आरे परमेश्वर सेमुला कि याङ जबा क्याम्री मनोवृत्ति सोभरी कायम थाल्ला आज अब परिस्थिति ग्याम व्यवहार लामा सन्तुष्ट तसेला रहस्य विवाह यीशु ख्रिस्ट ग्याम छ्याम्ला याङला एकता मोसेबा हिन्बा परमेश्वर ग्याम याङदेन याङसे सामना लजिबा जम्मन अवरोध गदे दा पार लबरी हम्बा देन अधिकार निदोन मुला कलसी तीन अधेला सोरेन्जे सत्र एनी गजेला सेम सदन ख्रिसला वचन से प्लिंसी गिक सेन गिग्दा रंगला जम्मन ज्ञान बुद्धि से लोगो ओचे परमेश्वरला आत्मासी पिनबा वै सेमहेन से गोसी परमेश्वर दा धन्यवाद पिंगो एनी गदेसे खजी भई के दिन ताम लसै प्रभु येशुला मिन ज्ञान सेन लौ ओचे प्रभु येशु ज्ञान सेन परमेश्वर आवादा धन्यवाद पिंगो चुसे रंगला परमेश्वरला रूबी शिवा लावन प्रत्येक दिन शोभा छनोट लस्युगो परमेश्वर दा रंगला ज्ञान निर्देशन लबरी पिन्छुगो थेन रे रंगला लुइरी रंगलन परिस्थिति करे हामायन कृतज्ञ सुसुगो थेन दे निश्चित रूपी रंगसे रंगला लुइरी उचित दुरी परमेश्वरला गेन आशिष कते अनुभव लस्युला भजन संग्रह 136:26 पदरी एरङ्गी मुबा स्वर्गला परमेश्वर दा थुजे छे पिङ्गो तिग्दा विषम परमेश्वरला प्रेम अनन्त काल दोना चलप्ता मुला आमेन परमेश्वर से रङ्गले जीवन रे प्रशस्त आशिष पिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ
3: टाइम चेक इट्स 7 p.m.

0: Bakalım bu...
1: कार्यक्रम शुभरात्रि शनिबार बाहेक 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला।